0: Prime Minister Narendra Modi has wrapped up the third India-Nordic summit, which was held in Norway's capital, Oslo. During the joint statement after the summit, PM Modi said that India would merge its scale with the expertise of the Nordic nations when it came to green technology, and together, both sides would work for the betterment of the planet.
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी